नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती, ये यादें, हाय यादें, यादें।

We have a dedication, and this is from Anuradha Chantar. She has written a poem in Hindi, which I will attempt to read and do justice to. Padma, kahan ho tum? Dhoond rahe hain hum sabhi tumhi ko. Luka chipi ab chhod do. Kaise dhoonde tumhe? Kahan ho tum? दूर हो हमसे बहुत, मगर हमारे दिल से कैसे दूर जाओगी तुम? तुम्हारी आवाज रेडियो पर जो हर शनिवार को सुनते थे हम, अब अपनी आवाज देकर बता दो कहाँ हो तुम? दूर हो गई हो हम सभी से, पर हमारी यादें से कैसे दूर हो पाओगे तुम? कैसे भुला दे तुम्हें दूर होकर भी? कैसे भूल पाएंगे तुम्हें जब ही जहां हो खुश रहना शांति? सो दिस वॉज अनुराधा'स इम्प्रॉम्प्टू पोएम फॉर पद्मा राइचवाल, एंड आई विल प्ले अ सॉन्ग विच सीम्स in sync with her emotion. So here is the one which is called Kaise Kahe Hum.